0: A prominent businessman enters into an illicit affair with a former employee. She and her husband are now blackmailing him. Going to the police would turn his affair into a matter of public record. To keep his marriage intact and his mistake hidden, he turns to the only option left. A private detective agency run by the husband and wife team of Naman and Nidhi Jain.
1: Hello.
0: The detectives have the identities of the blackmailers. What they need now is an address.
1: Sir, I'm talking to you. Your bank documents have come in the address, but the address is not traceable. And the courier person is standing there. Now, tell me your exact location so that the person can deliver.
2: Sir,
1: documents are important, sir. No, it will return. No, no, no, no. So, alternate address, sir.
0: With no address to go on, the team needs to improvise. Naman discusses options with his team.
3: अब क्योंकि उसका घर नहीं मिल रहा, सारे एड्रेसेस पोस्ट ऑफिस में जाके चेक कर लिया है, इन्होंने शायद एड्रेसेस ही अपने डाटाबेस में गलत मेंशन किए हुए हैं, तो हमें घर तो ट्रेस हुआ नहीं। सब्जी मंडी की आपने लोकेशन दी थी, सब्जी मंडी में भी जाकर उन्होंने पूरी टीम ने चेक कर लिया, सब्जी मंडी में भी कोई दिखा नहीं कहीं पर ये पर्सन। तो अब ये मैंने बात क्लाइंट को बता भी दी है, तो अब क्लाइंट ने क्या किया है कि अब हमारे पास एक ही तरीका था जो आप जैसा आपने फ़ोन पर भी सजेस्ट किया था मुझे कि भाई इसको बेट डालनी पड़ेगी। अब
0: Naman and Nidhi's detective agency originally investigated corporate espionage. But in a post-pandemic world, the growing market isn't corporate, but the business of love.
3: Out of all the cases that we undertake, pre-matrimonial cases is the maximum number of cases that we get. Our company used to book when we started around 2 to 3 cases in a month. Right now we are doing 150, 200 cases in a month.
0: In India, marriage is more than a bond between two people. It's a union between families. More than 90% of marriages in India are arranged. Love marriages, on the other hand, are typically seen as an act of rebellion. Unfamiliar with this relatively recent approach, parents are turning to detectives for help. Nitesh and Vandana Sethi are concerned about their daughter, who has fallen in love.
3: किसी भी तरीके शादी करना ही नहीं चाहते हैं, तो फिर हम जो है उनके सिर्फ नेगेटिव्स को ढूंढते हैं, ठीक है, ताकि आप डॉटर को कन्विंस कर सकें दैट ही इज नॉट द राइट बॉय फॉर हर।
0: बैकग्राउंड चेक्स लाइक प्रीवियस और करंट मैरिजेस, अफेयर्स, मेडिकल हिस्ट्री, इवन पर्सनल इंडल्जेंसेस लाइक स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग आर इंक्लूडेड इन द ऑडिट।
3: कि हम लड़के को फिजिकली फॉलो करते हैं और उसकी एक्टिविटीज़ को वॉच करते हैं कि वो दिन भर में कहाँ जाता है, किससे मिलता है और क्या करता है, जस्ट इन केस अगर वो किसी भी गलत एक्टिविटी में पाया जाता है, जैसे कि स्मोक करते हुए, ड्रिंक करते हुए, ड्रग्स लेते हुए, या फिर किसी और गर्ल से अगर वो मिल रहा है, किसी बैड हैबिट में है, तो किसी रॉन्ग कंपनी में, तो हम उस केस में से कंप्लीट वीडियोग्राफिक एविडेंस कलेक्ट करते हैं। क्या होता है कि जो चीज़ आपके लिए नेगेटिव है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी डॉटर के लिए भी नेगेटिव हो। बेसिकली ये केस है कि जिसमें देयर डॉटर हैज़ फॉलन इनटू लव विद अ बॉय एंड द फैमिली इज अ वेरी रिच फैमिली, राइट, एंड वेरी दे आर बिग इंडस्ट्रियलिस्ट एंड नाउ द डॉटर हैज़ फॉलन इनटू लव विद अ बॉय हु डज नथिंग एट ऑल एंड दे हैव हर्ड वेरी रॉन्ग थिंग्स अबाउट द बॉय। दे हैव ट्राइड टू कन्विंस देयर डॉटर बट शी इज़ नॉट रेडी टू एग्री टू एनीथिंग। पीपल स्टार्ट यू नो इंटीग्रेटिंग एंड सेविंग मनी फॉर दिस फॉर हिज मैरिज right from the start, from the time the child is born, and they have got a lot of dreams attached to this, you know, children's wedding. But now once the children have decided to go ahead with such a kind of marriage, they feel that what have we earned for? We cannot predict the outcome of any case, but as far as I could hear them, I found out, you know, the boy to be a little fishy.
0: Meanwhile, the detectives begin a digital forensic investigation and assemble a dossier on the unsuspecting young man.
4: Another part that I'll be covering is voter ID of this individual that will help us to check the address that is mentioned in the form if he's residing there along with his family. And yes, in this case, we have his details available along with his family members is also further details available after we download the electoral roll, we have the data.
0: They discover the boy has two separate registered residential addresses. other red flags are raised.
4: It's a strike of entity. So hinting towards that he was associated with this entity, but no longer now. So question mark on the job profile. What kind of work he's doing? Because if he's saying that if he's working, he's earning sufficient. So now question comes, where is he earning?
0: It's time to gather intelligence on the ground. Nidhi heads out with trainee detective Kajal.
2: तो जैसे फील वेरिफिकेशन के लिए हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे उनके नेबर्स या फिर रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स से हम लोग बात करके और डिटेल्स निकाल सकते हैं. तो हम लोग को इन्वेस्टिगेशन और इजी पड़ेगा. और जैसे कि मैं लोन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बन के जा रही हूँ तो माइट बी आई गेट मोर डिटेल्स ऑफ इट और इन्वेस्टिगेशन में वो बहुत ईजी पड़ जाएगा हम लोग को. बेसिकली हम उनके अगर घर जाएंगे तो हम उनको पता चलेगा कि हम इन्वेस्टिगेशन करने आ रहे हैं. तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन करने उनके घर नहीं जाएंगे, हम उनके नेबर्स से पूछताछ करेंगे या फिर उनके रिलेटिव्स अगर रहे तो उनसे पूछताछ कर सकते हैं. फिर उनके फ्रेंड्स रहेंगे, उनसे बात कर सकते हैं हम लोग.
5: और अगर आप किसी पोजीशन पे खड़े हो, जैसे ये सपोजिंगली ये घर है, आपको यहाँ पोजीशन लेनी है, तो आपको डे वन, जब आपका पोजीशन डे वन है, आज एक घंटे पहले आके या दो घंटे पहले आके देखना है कि कहाँ आप अपनी पोजीशन मेंटेन कर सकते हो. जैसे अब ये घर है, ये कॉर्नर हाउस है, आप यहाँ पर रह सकते हो, यहाँ पर चाय वाला है, यू कैन ईजिली स्टैंड यहाँ पे, दो घंटे तीन घंटे भी रहोगे कोई नोटिस नहीं करेगा. सेकेंड थिंग ये देखना है कि उस घर में या उसके बराबर वाले घर में सीसीटीवी तो नहीं है. आजकल मोस्टली हाउसेज में सीसीटीवी है, तो अगर सीसीटीवी है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सीसीटीवी के एक्सेस में नहीं आना चाहिए, आपकी पोजीशन वहाँ हो कि सीसीटीवी आपको कैप्चर ना कर सके.
0: It's time for the rookie detective to put her skills to the test.
2: नमस्ते, मैं काजोल बैंक से हूँ. लोन जी मैम, आपका कोई लोन नहीं है, वेरिफिकेशन के लिए आई हूँ. आपके पास में कोई रहते हैं उन्होंने लोन लिया है तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल चाहिए था. हाँ हाँ हाँ
6: हाँ
2: ओके. तो यहाँ पे रहते ही नहीं है
6: मम्मी पापा, तो उनके यही रहते हैं. कम रहता है.
2: हाँ हाँ
6: सारी रहता है.
2: और उनकी मदर?
6: मदर तो उनकी हाउसवाइफ है.
2: ओके. उनकी हाँ उनकी मदर उन गारंटर है. हाँ
6: पहली वाली आंटी के बारे में पूछ रहा हूँ. अच्छा, मुझे एक्सपायर हो चुकी है, उनको 8 साल हो गए
2: उनको. समझी नहीं मैं.
6: तो है हाँ पहली वाइफ थी.
2: ओके.
6: वो 8 साल हो गए हम.
2: हाँ हाँ.
6: अब जो है सेकंड मॉम, चेक मॉम.
2: हाँ, उनका नाम क्या है?
6: उनका नाम है
2: ओ.
6: अब तो पापा से भी नहीं बनते.
2: अब पापा से भी रिलेशन अच्छे नहीं है.
6: अच्छे नहीं है. साल दो साल में एक दो बार आ गया.
2: हाँ हाँ.
6: बाहर गली में तो लोग घूमते
2: फिरते. हाँ हाँ
6: हाँ. काम वाम पे नहीं रहता है, घूमता फिरता रहता है.

0: ग्रेजुएट 90,000 पर मंथ कमाता है। कोई सज्जन बात करना चाहता है? कोई सज्जन?
1: In the halls of this temple, an ancient tradition is taking a leaf from stock market trading floors. On offer is a low-cost community matchmaking service for Hindu families.
0: मांगलिक लड़का 33 साल 5/11 मई 92 बीटेक पीजीडीएम सर्विस एमएनसी 9 लाख का पैकेज।
1: इंटरेस्टेड पेरेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टिव ब्राइड्स एंड ग्रूम्स कम टुगेदर टू सी इफ द मैच इज राइट।

0: The detectives have failed to get the address of the elusive blackmailer. With less than 24 hours left, they are running out of options. Their best bet is to apprehend him at the cash drop location. But with a sting operation in a public space, anything can happen.
1: मैंने पैसे दिए थे वीडियो से तेरी मई रखूंगा
0: The location is set. If the blackmailer senses a trap, the compromising video will go public.
2: हाँ ताकि ज़्यादा अगर हंगामा मचता भी है वहाँ पे तो वो उसके हम टेक केयर कर सके और एक बार वो पकड़ा गया तो फिर तो कुछ बोल ही नहीं पाएगा और सिंपल सी बात है आपने कोई गलती थोड़ी करी हम कोशिश लेकिन फिर भी हमारी यही रहेगी कि ऑफिस में पहुँचने से पहले ही उसको नीचे से ही हम लोग उठा लें ठीक है टीम चारों ओर स्प्रेड होगी ठीक है तो हमने पूरी उसकी प्लानिंग करके रखी हुई है तो आप हाँ हम जो है ना उसको कोशिश यही करेंगे उसको नीचे से ही उठा लें
0: The detective agency has roped in the help of the police, who will conduct the raid.
3: Strategy के अनुसार हमें से कहीं बाहर लेना है।
4: Office सही जगह है, वहाँ भीड़ भाड़ है, हमारे आदमी छिप जाएंगे। और अगर इसने कहीं अकेले में बुला लिया ना, चेंज कर लिया, तो हम फंस जाएंगे।
0: But as the drop time approaches, the tracking signal begins to behave erratically. The phone is moving. But not towards the drop site. Could it be a decoy? Time's running out. The team must push forward with the sting. The police are planning to apprehend the blackmailer as soon as they can confirm his identity. The trap is in place. The police are in position. Now, they just need the target to walk into their crosshairs. The detectives wait in the background. While the police conduct the operation. The raid is a success.
5: हम लोगों ने उसको तो हार्डन ले आए बट द प्रॉब्लम इज दिस कि उसने अपना फोन अपनी वाइफ को दिया हुआ था राइट और हम सुबह से उसको ट्रेस कर दो उसकी लोकेशन तो हमें लगा कि ये कहीं पे दिल्ली में रोम अराउंड कर रहा है पता नहीं ही कम फॉर कलेक्शन ऑफ द पेमेंट और नॉट और अल्टीमेटली क्या हुआ है कि ही केम फॉर द कलेक्शन ऑफ पेमेंट विदाउट हिज मोबाइल एंड हिज मोबाइल वाज रोमिंग अराउंड समवेयर एल्स हिज वाइफ इज रोमिंग अराउंड हियर एंड देयर वाइफ जो है अभी तक किसी भी डेस्टिनेशन पहुंची नहीं है तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम उसको कहाँ से पिक कहाँ से करें उसकी वाइफ को या ही इज नॉट विद एनी मटीरियल राइट नाउ वी हैव टू कलेक्ट द मटीरियल नाउ तो वो मटीरियल कलेक्ट करने के लिए हमें जो है वो उसकी वाइफ को पिकअप करने आना पड़ेगा
0: The police have the husband in custody, but not the incriminating video. That footage is in his phone with his wife, who is still at large. They bring in her brother to help convince her to surrender.
2: So basically, अभी क्या है कि it's about to be solved now. तो अभी क्या हुआ है कि his wife has come inside. उसके पुलिस ने प्रेशराइज करके उसे सारे उसके लैपटॉप मेमोरी कार्ड मोबाइल फोन मंगा लिए हैं शी न्यू दैट शी हैज गॉट स्ट्रक ठीक है तो ऑब्वियसली यू नो शी इज ऑल अंडर प्रेशर कि दे वुड आल्सो गेट अरेस्टेड इट्स नॉट कि शी कैन फाइल अ फेक केस नाउ एंड शी विल बी लेफ्ट तो अब जो है ऑब्वियसली उसे अगेंस्ट जाएगा तो
6: सबसे बड़ा चैलेंजिंग तो यही था कि भाई एक तो हम एक्सट्रॉशनिस्ट को पकड़ लें दूसरा जो एविडेंसेस जो भी हो जिसके बेसिस पे वो ब्लैकमेल कर रहे थे वो सारे हम लेके और वो रिकवर हो जाए बस
2: पहले स्मार्ट गेम प्ले किया शी वाज रोमिंग अराउंड तो इस वजह से हम उसकी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे आके तो ट्रेस करके वहाँ से उसको उठा नहीं पाए वो सबसे चीज चैलेंजिंग लगी हाँ। और फिर जब वो आ गई थी और एकदम से आगे उसने हंगामा मचा दिया मैं रेबर केस डाल दूंगी पीछे से किसी ने उसको समझाया होगा तो उसको इंटेंसिटी नहीं पता थी सिचुएशन की वो आते ऐसे बोलने लगी तो हमें लगा कि कोई और बहुत बड़ा हंगामा ना हो जाए बट जब उसने रियलाइज किया कि इंटेंसिटी इस केस से कितनी ज़बरदस्त है और जब उसके हस्बैंड ने भी उसको बताया उसके हस्बैंड के भाई ने भी उसको बताया तो फिर वो एकदम से सबसाइड हो गई ना तो अब वो रो रहे हैं आप तो दोनों
6: नहीं ठीक है हमारे को भी यही डर था कि कहीं वो जो लेडी है वो एविडेंसेस को कहीं छुपा दे या वो कर दे तो वो अल्टीमेटली उनको हमने पकड़ा तो
0: The compromising video is secured. For the businessman, it's a quiet drive home to a wife and family who will never know how close they came to seeing him in the tabloid news. The case is closed. His secret buried. His public image intact.
7: Go casually.
8: Hello.
7: Talk to him.
8: Mm-hmm.
7: And just be in the moment.
0: Meanwhile, the housewife suspicious about her husband's sexuality may finally get the conclusive answers she needs. An undercover agent is heading to meet her husband. He's equipped with a special jacket. Hiding in it is a pinhole video camera. If all goes to plan, it will record everything that happens.
7: Just started recording. All the best.

0: But even as solar development expands, not all nearby villages have access to electricity. At night, Bhagirath, one of Kishanji's brothers, returns to a house that still has no grid electricity. While transmission lines may run nearby, extending power to scattered desert settlements has been a challenge.
1: चारों तरफ सोलर प्लांट लगा हुआ है, घर में लाइट नहीं है। वो कोई छोटी मोटी लाइट बैटरी बूटी से उसे काम चलाते हैं और चारों तरफ सोलर की लाइट है। हमारी लाइट डानी में नहीं, मकान में लाइट।
0: His family relies on a small battery-powered light from a portable solar panel, enough only for basic needs.
1: नहीं है लाइट, वजह से हमारे फसल नहीं ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। लाइट होती तो फसल ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं।
0: For families like Bhagirath's, the benefits of mass solar farm expansion that's happening in his very own village remain out of reach.

0: In Norang Desar village, another challenge shapes daily life: water. Santosh and Suraibane begin the day by walking more than 2 kilometers to fetch water for their families and livestock.
1: हमारे पानी की बहुत दिक्कत आ रही है हमारे पास में गांव के पास में पानी कभी कभी मिलता भी नहीं है
2: दूर जाके लाना पड़ता है लगभग 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर दूर जाके पैदल जाके लाना पड़ता है
0: In many drought prone parts of India, water is still delivered by tanker trucks, a temporary

0: A lifeline for villagers when local supplies run dry.
1: हमारे टैंकर से मंगवा रहे हैं और टैंकर 5-7 दिन नहीं आ रहा है. गर्मी में तो बहुत ही सारा ऊंट और पशु है वो भी तीसरा रहता है.
0: With the arrival of solar farms, that limited water supply is now shared. Panels need to be cleaned regularly, especially in the dusty desert.
2: हमारे यहाँ एक समस्या बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ सोलर प्लांट होने के कारण हमारे यहाँ टैंकर है वहाँ चले जाते हैं यहाँ पर नहीं आते हैं. तो ये बहुत बड़ी आपत्ति आ रही है हमारे लिए कि पानी यहाँ नहीं पहुँच रहा है हमारे लिए.
0: In the Thar Desert, where water has always been scarce, the demand for solar is placing new pressure on an already limited resource.